पते विधि कराचित कूर्म राज भंडारतो नृहरितीर्थ मुनींद्र लब्ध आनंद तीर्थ मुनि वंश यतीन्द्र पूज्य श्री मूल राम भवतात्तव सुप्रभातम् श्री राम दूत हनुमन यदुनाथ दास श्री भीमसेन वर रौच्य पुरावतार श्री व्यास हृत् प्रियतमामित शुद्ध बुद्धि श्री मध्वराज भवतात्तव सुप्रभातम् ब्रह्माज्ञयादिति कुले बहुदोष पूर्णे जातोपि भक्ति भरितो भुवनम् समस्तम् योऽपि पवोदि विशदाम्बर